कत हूँ सुचेत हो के चेतना को चार किया, कत हूँ अचिंत हो के सोवत अचेत हो। साहेब गुरु गोविंद सिंह साहेब जी, बहुत प्यारी रचना अकाल उस्तत विच फरमान दी। कतहु सुचेत होय के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो।

आओ भाई, आज दे दिन अरदास करिए। पातशाह, साढ़े हिरदे विचों नफरत दी आंधी जो चलती है उसनों मिटा। बख्शिश कीती सी आप जी ने भाई कन्हैये उत्ते, जिस वेले उसने दुश्मन नूं दुश्मन ना समझिया, फिर तू सिख हो के सिख नाल नफरत करें, गल बनेगी। कदी भी खून नाल खून नहीं तुलदा, पानी पाया ही खून तुलदे। नफरत नाल कदी नफरत खत्म नहीं होई, ओदे उते प्यार दा पाना पानी पाना पएगा। साच कहो सुन लेहो सबै, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पाए। बाबा गुरमुख सिंह जी एक गल आखदे हुंदे ने, तुसी किसे दे घर चले जाओ, तुसी उन्हां नूं कहो मैनूं प्यार दिओ, कोई नहीं देगा। पर जे तुसीं खड़ के कह दिओ आओ लोको मैं तुहानू प्यार दियां, हजारां लोग तुहाडे कोल आउणगे। ते पहल तूं करनी है, प्यार असां देना है लैणा नहीं। देवे तां ठीक है, पर असीं कहिंदे आ इहने फतेह नहीं बुलाई, असीं क्यों बुलाईए। ना भाई, ओह नहीं बुलांदा, तूं बुला लै, तूं प्यार कर, तेरा फर्ज़ है। हंकार ते नफरत दी आंधी विच ऐ मेरे पातशाह, जिवें तुसी मलम ते पट्टी दे दित्ती सी, ते मानो गाउंदा गाउंदा यही कुछ कह रहा सी। भावें कोई मोमन वेख रहा है, भावें कोई पहाड़ी राजा है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, पानी मूंह विच देंदा होया इको ही पुकार है, केड़ी

जच गंधर्व उरग कहूं विद्याधर कहूं भय किन्नर पिशाच कहूं प्रेत हो कहूं हो के हिंदू आ गायत्री को गुपत जप्यो कहूं हो के तुरका पुकारे बांग देत हो कहूं को कुकाब होए के पुराण को पढ़त मत कतहूं।

देतो हो कहूं देवतान के दीवान में विराजमान कहूं दानवान को गुमान मत देतो हो कहूं इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी सी कहूं इंद्र पदवी छिपाए छीन लेतो हो।

पावक में अर पवन हूँ मैं, पृथ्वी तल में सुकहाने जाई। व्यापक है सब ही के बिखे कछ पाहन में परमेश्वर नाई। व्यापक है सब ही के बिखे कछ पाहन में परमेश्वर नाही। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे।

उस वेले वो अकाल पुरख किसे ना किसे ने इस संसार ते भेजता। कलयुग विच जद जुलम और पापां दी अत हुई धरती ने पुकार की थी ता उस वेले उस अकाल पुरख ने सुनी पुकार दातार प्रभु गुरु नानक जग माहे बठाया। इस संसार विच धन गुरु नानक साहब प्रगट होए और सब तो वड़ा काम ए कीता चार वर्ण खत्री ब्राह्मण शूद वैस चारा ने एक जगह इकट्ठिया कीता और ए उपदेश कीता ए जाता पाता इंसान दिया बनाईया हैं सानू सारियां नू बनान वाला एक परमेश्वर है। आओ फिर एक जगह बह के उसका सिमरन करिए। तन गुरु नानक साहब का अवतार होया देवी देवतें अपछरा खुशी दे गीत गाए। आओ फिर इस खुशी दे मौके आपां भी धन गुरु नानक साहब की पवित्र मिठी याद विच ए शब्द गा के रसना पवित्र करिए।

ना ही कोई ऐसा ढंग है ते ना ही परमात्मा मेरे मिठे बोलने जिड़े बोल बोल के मैं तेनू अपने आप ते मोहित कर लवा। ऐसा गुण मेरे अंदर कोई भी नहीं है, मैं ते अवगुणा दा परिया। तकना के परमात्मा रूप कैसा वेखदा, शारीरिक रूप नहीं वेखदा। साहिबा ने बाणी विच कथन की।

कुलवंत है, कुलवंत है, पतवंता सज्जन है, जिद हिरदे अंदर प्रभु दे नाम दा निवास है। हे परमात्मा, मेरे अंदर ते अवगुण भरे ने गुण ऐसा कोई भी नहीं। हे परमात्मा, आप दी मंग है कि बोल मिठे बोल, मैं जद बोलना कौड़ा बोलना, ते मेरा परमात्मा कैसा है, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। ओ मिठा बोल बोलदा है ते हुक्म करदा है भाई मिठा बोल बोल, जो बोल बोलने करके किसे दा भला होवे, किसे दा मन ना टुटे। हे परमात्मा, जेड़े गुण तेनू चाहिदे ने मेरे विच नहीं, इसलिए मैं चंगा नहीं।

पर तू अपने नाल भी अपराध कर रहे। किस तरह? नाम ना जपे से आत्म घाती। जो मनुख नाम नहीं जपते, सिमरन नहीं करते, वो अपनी आत्मा का आत्मघात करके अपराध कर रहे।

कोई ना रखना। विश्वास घाती अकिरत कण, विश्वास घाती किसनु कहिंदे ने, जिहड़ा किसे नु प्यार विच लिया के बसा के मारे, अपना बना के मारे।

आया हाँ उदो तो मेरे मन नु शांति हुण ते जेड़े मेरे अंदर वसदे हुए मेरे दुश्मन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ते जेड़े वैरी सन ऐ पातशाह हुण ते ओ भी मेरे मित्र बन गए हैं ओ भी हुण मेरा बुरा नहीं चित वदे सारे ही चंगा चित वदे हैं ये सब तेरी कृपा है ये तेरी मेहर है तू ता मैनू एनिया बख्शिशा कीतिया हैं एनिया रहमता कीतिया हैं पातशाह हुण ते मैं आनंद ही आनंद वेख रहा हाँ चारे पासे खेड़ा ही खेड़ा नजर आउंदा है क्योंकि तेरी कृपा दृष्टि हो गई है ते जदों तेरी कृपा दृष्टि होवे सारे कार्ज फिर अपने आप रास हुंदे हन ते सतगुरु तेरी मेहर है तेरी कृपा है।

पर सोचे है मना जेड़ा दूध तू सुचा समझ के खीर बनाई ए दूध ता झूठ है किस तरह जदू गां चोई दी वच्छा छड़ी दे वच्छा गां दे थान चुंग दे ते किटाणुआ दे सदका सारा दूध झूठा हो जाता है ए दूध झूठा खीर झूठी पाई मैं ठाकुर दी सेवा

शेर की आवाज आई। भगत जी उस पासे तुर पे। सामने शेर आया। शेर दियां अखां दे विच अपनियां अखां मिलाईयां तां ए गल कही।

कुरुक्षेत्र में अश्वमेध जग अभंग थयो, उन अमृत नाम विशेष इति जिन एक बार श्री वाहे गुरु कहो।

द्वारका नगरी पहुंचया ते भगवान कृष्ण दे दरबार नू सिंह द्वार किया। सिंह दा मतलब है शेर, ते जेड़ा शेर दी शरण विच चला जावे फिर उसनू होर किसे दी शरण दी लैण दी लोड़ नहीं पैंदी। भगवान कृष्ण जी दे दर ते चला गया, ते जदों चला गया दूरों भगवान कृष्ण जी ने देखिया गौ नाल जिस तरह उसे दी उड़ीक विच बैठे हन। अंतरयामी भगवान कृष्ण दूरों सुदामे नू देखदे होए अपना सिंघासन छड़ के सुदामे वल वधे। पाइसा फरमान करदे हन।

मगर भाई साहब भाई गुरदास जी जेड़ी रमज तक पहुंचे कहंदे ने दोनों ही अपने अपने असूल ते कायम। ते ए जानदे होए भगवान कृष्ण कि सुदामा अपनी जबान तो मंगेगा नहीं, ते भगवान कृष्ण ने बड़ा प्यार कीता, परदखना लई पैरी पै के गले लगाया और उदे चरण तो के उसनू अपने सिंघासन ते बिठाया। ते सिंघासन ते बिठाण तो बाद उसनू बड़ा प्यार कीता, इतना प्यार कीता। ते प्यार करन तो बाद भगवान कृष्ण कहन लगे, सुदामा बचपन तो हुण जवानी आ गई है, इतनी उम्रा हो गई है, बड़ा चिर होया है मिलियानू, कोई गुरु दी सेवा दी कथा सुना।

दरबार विच बैठे साई मियां मीर आया बेनती कीती गरीब निवाज आपने जो ए बाणी रची है तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे।

आए पिता दे दर्शन कीते। साहब जी ने सोना हाथ गुरु हरगोबिंद जी दे सिर ते रखिया ते फिर लाहौर वाल चाले पा दिते। नाल तुरी जाउंदे हन गुरु अर्जन देव पातशाह ते नाल रसना तो ये शब्द उचारी जाउंदे हन की कहिंदे हन।

कुछ दूरी तक साहब जी नाल गईयां। चारे पासे संगतां दी अखां विच आसू हन। साहब जी कहन लगे, बस सात संगत तुसी हुण इत्थों वापस चले जाओ ते साडे नाल कुछ प्यार वाले अगे जाणगे। ते जिस वक्त गुरु अर्जन देव पातशाह लाहौर पहुंचे तां चंदू दीवान जो अहंकार दे मद विच सी कि मैं राजे दा दीवान हाँ, बादशाह जहांगीर दा दीवान हाँ, पहले तो गुरु अर्जन देव जी नूं किया कि ए रिश्ता आप गुरु हरगोबिंद जी दा मेरी लड़की नाल कर दिओ तां मैं सारे सुख तुहानूं देंगा। तां गुरु अर्जन देव पातशाह कहण लगे, चंदू मैं संगत दा हुक्म मोड़ नहीं सकदा। संगत दा हुक्म है, साध संगत दा हुक्म है, ए रिश्ता तेरी लड़की दे नाल गुरु हरगोबिंद जी दा नहीं हो सकदा। तू सुख दे दुख दे ए तेरे हाथ नहीं, ए तां अकाल पुरख दा भाणा है। तां चंदू पापी ने अपनी हवेली विच जिथे तत्ती लो अंदर लाई हुई है, अग बल रही है, तले ऊपर तवा लाल होया पे। आख्या, फिर जे ए रिश्ता कबूल नहीं करना ता ए तत्ती लो ते बहना पवेगा। साहब जी कहन लगे कि अकाल पुरख दा पाना इवी है ता तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। ता गुरु अर्जन देव पातशाह आप अकाल पुरख वाहेगुरु नूं नमस्कार करके ते तत्ती लो ते चौकड़ा मार के बह गए। सात संगत बोलो श्री। ते फिर ऐसी अडोल बैठे, एक दिन बीत गया, दो दिन बीत गए, ते चंदू पापी अजे भी मन एदा ठरिया नहीं। आख्या, रेत तपाओ। रेत तपाई, पड़पूंजे नूं सदिया जो दाने पुंदा सी कि तू अपने कड़छे भर भर के गर्म रेत लैके अर्जन दे सिर विच पा। सात संगत बोलो श्री। तलों तत्ती तवी अग बल रही है, उत्तों गर्म रेत दे कड़छे पै रहे हैं। ते साहब जी दे जदों भी बुल फुरकदे हैं तां विच्चों एही आवाज आउंदी है, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। साई मियां मीर जदों पता लग्या साहब जी गुरु अर्जन देव लाहौर आए हैं, जदों दर्शन करन आया वेख के हैरान रह गए कि गुरु अर्जन देव पातशाह तत्ती लोह ते बैठे हैं, उत्ते गर्म रेते पै रहे हैं। ता हाथ जोड़ के बेनती की, गरीब निवाज एक ही पाना है। साहब जी कहन लगे, साई मियां मीर तू पुछिया सी ना ऐसे प्यारे दे दर्शन कराओ के जो कहिंदा होवे तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई। ता आवेख लै, अग्न विच शरीर जल रहा है, तन तप रहा है, मन शांत है हरि नाम से। अंदर परमेश्वर दा नाम वसया है, अंदर सेक नहीं पहुंच रहा मन नूं, आ शरीर नूं क्या दुख देवेगा ए चंदू। साई मियां मीर जिसने हरमंदर साहब दी नींह रखी सी, जात दा मुसलमान सी, लेकिन गुरु अर्जन देव पातशाह दा प्यारा सी, ते गुरु अर्जन देव महाराज ने उस मुसलमान मियां मीर पासों अमृतसर दे विच जदों हरमंदर साहब साजिया तां नींव हरमंदर साहब दी मियां मीर पासों रखाई कि ए सांझी वालता दा घर है, गुरु नानक दा घर सांझी वालता दा है। मियां मीर ने बेनती की, गरीब निवाज जे आप कोई कला नहीं दिखांदे, शक्ति नहीं दिखांदे तां मैनू हुक्म करो, मैं दिखावां। साहब जी कहन लगे, मियां मीर करना वड्डी गल नहीं है, जरना वड्डी गल है।
ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਰ ਲੈਣਾ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੇਖ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਖੜੋਤੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

गुरु मेरे संग सदा है ना। ते फिर जिस वेले आख्या गुरु अर्जन देव ने, मियां मीर जितने तन पर पड़ेंगे छाले उतने सिख होंगे सिदक वाले, उतने ही सिख सिदक वाले होंगे। जे गुरु ने पाना नहीं मनिया तो सिखा ने फिर पाना क्या मनना है। ते फिर जिस वेले चंदू आया अजे भी मन नहीं भरिया तां साहब जी कहन लगे चंदू साडा मन करदा असी इशनान करिए। तीन दिन हो गए हन चौकड़ा मार के बैठे हैं, साडे प्यार वाले जिहड़े नाल आए सन उन्हां नूं बुलाओ। ओ प्यार वाले गुरु अर्जन देव पातशाह नूं प्यार नाल जिस वेले रावी दे किनारे ते लियाए, साहब जी कहन लगे हुण साडा गुरु नानक दे पास जाण दा समा आ गया, असी जपजी साहब पढ़ांगे। जपजी साहब का जिस वेले समाप्ति करांगे अपना शरीर अलोप कर लांगे रावी विच, ते तुसी वापस हरमंदर साहब अमृतसर चले जाना। ते ए सब नू आखना कि गुरु अर्जन जी ने उस अकाल पुरख के पाणी विच रह के उसके हुक्म विच अपना सिर निभाया। ते जपजी साहब जिस वेले गुरु अर्जन देव जी ने आरंभी, ते जिस वेले जपजी साहब का भोग पाया, जिनी नाम ते आया गए मुशक्कत काल, नानक दे मुख उजले गेती छुट्टी नाल रावी विच अपना शरीर अलोप कर लिया। ते मानो अजे भी रावी दी लहरां विचों ए आवाज गुरु अर्जन देव दी आ रही।

तू बेअंत को विरला जाने, को विरला जाने। गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द। रंग हाए मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा, तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा। नाना रूप तरे बहु रंगी सब तेरे नियारे, तू बेअंत ब्रह्मा न जाने अंत न पावत देव सभी। मुन इंद्र महाशिव जो करी, तू बेअंत अत ऊंचा ताका दुर्बारा।

जस श्रवण सुनावना, हर जस श्रवण सुनावना। तुद आवत मेरा मन तन हरिया, तुद आवत मेरा मन तन हरिया। हर जस

हलत पलत दोइले हो सवार, राम नाम अंतर उर्धार, पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिस मन बसे तिस साच परिख्या, मन तन नाम जपो लिवलाय।

संत बाबा अतर सिंह महापुरुष मस्तु आने वाले कोल गुरसिख बैठे ने एक कल्याण सिंह भी बैठे। महापुरखा ने आख्या अज भई चित कर दे धर्म दे किरत दी रोटी खाई। किरत दी रोटी कहन लगे महाराज जो हुक्म अज ही प्रबंध कर लेने आ। मजदूरां वाले कपड़े पा ले, एक ठेकेदार दे कोल चले गए जेड़ा बिल्डिंग बना रहा सी। भाई कल्याण सिंह जी पंच सत गुरसिखां नूं नाल लेके जदों उहदे कोल पहुंचे हन, कहन लगा जी असी मजदूरी करना चाहते हाँ करो। अठ घंटे काम करना पड़ेगा, ठीक है करांगे। मजदूरी तय हो गई, जितना काम अठां घंटियां विच करना सी चौं घंटियां विच कर दिता। एक बारी प्यार नाल बोलिए सतनाम श्री वाहिगुरु। ठेकेदार ने बुला के आख्या ऐ फड़ो पैसे ते जाओ। कहन लगे नहीं वायदा अठ घंटे दा है। फिर दुगनी मजूरी देन लगा, कहन लगे नहीं जो बचन होया है ओ ही लवां। कहन लगा पहले मजदूर वेखे ने अजीब आदमी हैं, ऐसे बंदे ता मिले नहीं। खैर जदों उन्हां पैसियां दा समान लियांदा आटा घिओ दाल ते फिर हत्थी बना के बाबा अतर सिंह जी नूं छकाया, छक के बाबा जी इतने प्रसन्नता विच आए कहन लगे अज ते लंगर छकण दा आनंद आ, कल आपां भी चलांगे पाई। बाबा अतर सिंह जी ने भी मजदूरां वाले भेस कर ले। अज उसे ठेकेदार कोल पहुंचे, अज भी भाई काम मिलेगा। ठेकेदार उन्हां वल बार बार तक रहे है कि ए मजदूर नहीं हन, ए कोई फरिश्ते नहीं, ए कोई होर लोक दे बंदे आए हैं। ते जदों वेखदियां वेखदियां बाबा अतर सिंह जी ते निगाह पई ते चरना ते डिग पिया, कहन लगा तू मजदूर नहीं है। ऐसा नाम रतन निर्मोलक उन पदार्थ पाया, अनक जतन कर हृदय राख्या रतन न छपे छपाया। गुरु की साथ संगत कहन लगा तुसी मजदूर नहीं ते कल दा ही मेरे दिमाग ते बड़ा बोझ पिया होया है, ते अज तुसी आए हो मैनू माफी दे दियो। मैं ए गुनाह नहीं कर सकदा कि तुसी मेरे सामने टोकरी चुको। कुछ सिख लंघ रहे सन, उन्होंने वेख्या ओए बाबा अतर सिंह जी इत्थे खड़े ने, ते झट चरना ते मथा टेकिया। गुरु की साध संगत कहन लगे बाबा जी आप दी किरत तां एहो ही है कि आप कीर्तन सुनाओ, सानू चंगे राह लाओ, ते आप इस भेस विच खड़े हो। ते फिर कहंदे ने बाबा अतर सिंह जी ने सिंघां वल वेख्या,
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸੇ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਤਨੇ ਦਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 18 ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ 18 ਹੀ ਦਿਨ ਫਿਰ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਈ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਭਾਗ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਪਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਵੇਖੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੋਭੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਲਾਵਟ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਅਨਰਥ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮਾਪਤੀ।

आप तो डर लगता है फिर। मेरा रूप बिगड़िया होया भयानक है, मुबारक है जो बंदे नूं अपने आप को डर लगन लग पवे ना। वो समा मनुख दे बदल जाण वास्ते बड़ा मुबारक है, मनुख दे चंगे बनन दे दिन आए समझ। जिस दिन बंदे नूं अपने अंदर फैले हुए औगण नजर आ जाण, धन गुरु नानक ने उन्हां औगणां ते सट नजर पवाई। कहिंदे मैं वेखदा, भाव धन गुरु नानक दे इस शब्द द्वारा असीं वेखणा है अपने अंदर, ते देखणा है सारा कुछ, बहुत कुछ नजर आ जाएगा जी। सारा कुछ नहीं ते बहुता कुछ नजर आ जाएगा। एक स्वान दोए स्वानी नाल, एक तां मेरे अंदर कुत्ता भौंक रहा है, उहदे नाल दो कुत्तियां भौंक रहियां ने। लोभ कुत्ता, आशा ते तृष्णा उहदे नाल रलियां होईयां कुत्तियां। हर अमृत वेले हर दिन चढ़दे पलक, पलक लफ्ज जिहड़ा है इहदा अगर आपां बिल्कुल सही लफ्ज अर्थ वास्ते लभीए, अंग्रेजी चा पट्टू मारो कह सकदे। अगला चढ़दा दिन, हर अमृत वेला हर चढ़दा दिन, जिस वेले मैं भगती दे मार्ग ते तुरना चाहना, मेरे राह विच भौंक भौंक के मैनू ये परेशान कर दे लोभ तृष्णा ते आशा। इन्हां दे भौंकण दे नाल मेरे अंदर हलचल पैदा हो जाती, पलके भौंके सदा बयाल, बड़िया भयानक आवाजा कढ दे। कूड़ छुरा मुठा मुरदार, पुराने समय च कुछ लोग जंगली कबीलियां चो ऐसे भी होंदे सन जेड़े ना तो लिबास चंगा रखते सन, ना उन्हां दे खान पहनन पीन की मर्यादा सी कोई, ना उन्हां दे डेरियां ते कोई समाजिक मर्यादा ही सी। जो मिल गया मार लिया खा लिया, जिन्हू वेखिया लुट लिया। आम तौर ते साडे लोग सासियां नूं भी ऐसा करके जानते रहे ने, हालांकि सासी कौम कुछ होर सी। ये राजपूतां दे वह लोग सन जेड़े साहस करके हिम्मत करके बागी हो तुरे सन, पर क्योंकि थां थां फिरदियां होया इन्हां लोगों ने भी चज नाल कोई टिकाणा ना बनाया, इन्हां दी मर्यादा भी खाण पीण पहनण दी कोई चंगी ना रही। ते आम तौर ते समाज विच इन्हां नूं भी उसे निगाह नाल वेख्या जाण लग पिया, जिहड़े असभ्य लोग सभ्यता रहित सभ्यताहीन लोग साडे समाज च पसरे होए सन, जिहड़े किसे समाज नूं किसे इंसानियत दे कानून नूं मनण नूं तैयार नहीं, गलत खाण पीण गलत काम करन वाले, ते फिर लोगों नूं लुट्टण मारन जो कुछ मिल जाए आम तौर ते बिल्ले न्योले जो कुछ मिल गया सब खा लेंदे सन। हुण ओह छुरा भी रखदे सन, तीर भी रखदे सन, हथियार रखते सन, हालांकि वीरता दी निशानियां शस्त्र कोल होना बहादरी का निशान है, लेकिन उन्हां वास्ते जिन्हां परोपकार वास्ते वरतना वे जिवें तुहानू महाराज ने बख्शे। ते जिहड़ा पराए बुरे वास्ते किसे दा नुकसान करके किसे नूं तड़फा के उहदे च स्वाद लैण वास्ते हथियार वरते जाण, ते फिर बड़े भयानक हो जाते। महाराज कहिंदे ने मेरे अंदर कूड़ दा छुरा मैं लक नाल बने। हराम खाना, क्योंकि महाराज ने पावन बाणी च बड़ा स्पष्ट किया है, हक पराया नानका उस सूअर उस गाय। मुसलमाना वास्ते

नजर पै गई है ना। कहंदे ने पंज तां मुसीबतां खड़ियां करन वाले विखाद खड़ा करन वाले काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ने। मैं कल्ला गरीब फस गया इन्हां कोल, इन्हां कोलों तू बचा सकना रखण हारा तू है, तू रख सकना रख ले। खेद करें और बहुत संतावें, बहुत पुआड़े खड़े करते ने, बड़ा तंग करते ने, बहुत सताउंदे ने, परेशान करते ने। आयो शरण तुहारे, मैं तेरी ओट तकी है तेरी शरण आया, क्योंकि होर ता कोई तरीका लभिया नहीं। कर कर हारे हो अनक बहु पाती, मैं बड़े जतन कीते ने मेरा खेड़ा नहीं छड़दे, छोड़े कत हूं ना ही। एक बात सुन ताकी ओटा, तांकी नहीं कहना ताकी तकी, एक गल सुनी सी मैं ओदा आसरा तक लिया, ओदा आसरा रख लिया। ओ केड़ा आसरा केड़ा रखे है कि साध संगत मिट जाए, तेरे नाल जुड़े लोकां दी संगत च बैठण नाल ए हट जांदे। कुछ भी कल्ला बंदा ही किसे बंदे दी या किसे दुश्मन दी मार थले आउंदा है, दो चार होण ते हमला करन वाला भी सोचदा है। ते जे रब नाल जुड़े, प्रभु नाल, गुरु नाल जुड़े होए बंदे चार बैठे होण, विकारां दी की हस्ती है के अंदर आ जाए, जुड़े होण सही। सतसंगत दे आसरे मैं सुने मिट जांदे ने, मैं आसरा तक लिया। ते फिर कर कृपा संत मिले मोहे, सत्संगियां विच रहण नाल, सत्संगियां च बैठ नाल, गुरु रूप संत दे बचन मैनूं प्राप्त होए, धीरज प्राप्त होया, दिन ते धीरज पाया। संती मंत दियो मोहे निरभौ, गुरु संत ने मैनूं निरभयता वाला मंत्र बख्शिश कीता, इन्हां नूं वस करन वाला। गुर का शब्द कमाया, इस शब्द के द्वारा

सतगुर के चरण तोय तोय पीवा, सतगुर के चरण तोय तोय पीवा, गुरु नानक जप जप सद जीवा, चरण कमल आधार जन का राज पूंजी एक तान।

चन कमल गुर के जप हर जप हो जीवा, चन कमल गुर के जप हर जप हो जीवा, चन पखार करम गुर सेवा बार जाऊ लखबरिया, जय प्रसाद ए पौजल तरिया जन्नानिक प्रेस मिलिया।

हर हर चरण दे और धारे, हर हर चरण दे और धारे, शिव स्वामी सदगुर अपना काज सब हमारे, बुंदार पूजा परमेश्वर हर कीर्त तत् विचारे, पुनदान पूजा परमेश्वर हर कीर्त।

कैसा ढंग है ते ना ही परमात्मा मेरे मिठे बोलने जेड़े बोल बोल के मैं तेन अपने आप ते मोहित कर लवा ऐसा गुण मेरे अंदर कोई भी नहीं है मैं ते अवगुणा दा परया तकना के परमात्मा रूप कैसा वेखदा शरीरक रूप नहीं वेखदा

कुलवंत है, कुलवंत है, पतवंता सज्जन है, जिद हिरदे अंदर प्रभु दे नाम दा निवास है। हे परमात्मा, मेरे अंदर ते अवगुण भरे ने गुण ऐसा कोई भी नहीं। हे परमात्मा, आप दी मंग है के बोल मिठे बोल, मैं जद बोलना कौड़ा बोलना, ते मेरा परमात्मा कैसा है, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। ओ मिठा बोल बोलदा है ते हुक्म करदा है भाई मिठा बोल बोल, जो बोल बोलने करके किसे दा भला होवे, किसे दा मन ना टुटे। हे परमात्मा, जेड़े गुण तेनू चाहिदे ने मेरे विच नहीं, इसलिए मैं चंगा नहीं।